ओहन में आयल चनी मुटत पेन के चढ़ रे हो अतने सीता दिया और असी ओमन में आयल चरे स्पीतु संत अतने सीता दिया नमिया कबीर या पुएस रवी कि ने भी कोच कि ने रिशिर लाल कि ने तोला कच्चा या चुए पुएस कि विला रखुशी कि ने मियाल कि विला नशा सिराक चरे स्पीतु संत चपना और आर चक खोरा पे आई पुएस पुएस एक ही आवारे नेसेसिटाडो चर दियोस Quien panto carca ni macha ni mercren presencia en poder y el Espíritu Santo. Sigue orando, sigue clamando a Dios, pues Padre. Ay. China, chinar en presencia, colic. Chinar en toco, colic, el Espíritu Santo. Sigue con la fecha ni. Si caía la confianza, la mirada, que el Espíritu Santo, pobre que para la boca, y rabayas, ay, ay, ay.